हालांकि पावन बाणी विच बड़ा स्पष्ट किया गया है, दद्दा दोष न देऊं किसे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवरजना। और अपने दोषा वाले झात मार लेनी भी बड़ी वड्डी गुरमुखताई। दोष हुंदियां होया, गुनाह हुंदियां होया, गलतियां हुंदियां होया, इन्हां ते निगाह मार लेनी ही बड़ी वड्डी गल है। जेड़ा अपनियां गलतियां वल ना वेखे ते अपने अगे आए हुए नतीजियां तो भी दूजियां नूं दोषी ठहराउण दा जतन करे, वह बंदा कदे ठीक राह ते नहीं तुर सकदा। दूजियां च दोष कढ़न वाला बंदा कदे आप ठीक नहीं हो सकदा। शुद्ध पवित्र ते निर्मलता वह होवेगा जो अपने दोष लभण दा जतन करे। इथे अपने दोष लभण की गल मारे सच्चे पातशाह ने शब्द द्वारा सानू प्रेरणा बख्श की, हो कह जी दोष त्रेहो जी, मेरे अपने इन्ने दोष ने, मैं किसे नूं कादा दोष दे, मेरे विचों गुण नहीं हन।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांके हृदय बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

अर्थ है, शेर ने अपनी खुराक ली बकरी नु फड़ लिया है। होया कि छीप जूती बकरी ते मर्दी होई हड़ हड़ हसी। क्यों? छी पुछे बिस्माद हो इत असुर के तरहस रहसी। सिंह कहता है मैं चल जा, तू मेरे फंदे विच है, मैं तेनू पकड़ लिया, तू मेरी खुराक है, मैं तेनू खा जाना ते अपनी आंदरा तृप्त करनिया हन ते अपना पेट पालना। पर मैं इस चर्ज इस गलों हां भी जदों मैं तेनू पकड़िया तेनू तेरे सामने मौत दिसदी है, तू फिर खिड़खिड़ा के हस रही है, क्यों? रीजन की है? छी पुछे विस्माद होए इत अवसर इस समय ते कित रहस रहस। तू किस खुशी दे अंदर हस रही है, तेनू हासा क्यों आ रहा है? जवाब है छीप जूती बकरी मर्दी होई हड़ हड़ हसी। छी पुछे विस्माद हो इत अवसर कित रहस रहसी। बिनो करें दी बकरी बिनों करें दी बकरी उतर असाडे कीचन खसी। अकत धूड़ा खाद्या अकत धूड़ा खाद्या को खल उखल बनसी। खादा की अकत धूड़ा, सजा की मेरी खल पुठी करके ला के शरीर तो जुदा कर दे। मैं हसदी यो हां भी सिर्फ महज अकते तो धूड़ा खाण दा सदका मेरी औलाद निकम्मी हो गई ते मेरी पुठी खल लै गई है सिर्फ अकत धूड़ा खाण करके। फिर सुनो अकत धूड़ा खाद्या को खल उखल गणसी। मांस खान गल वड के हाल चनाड़ा कौन होवसी। जेड़े छुड़ियां फेर फेर श्री सभा ना झटका झटका के बकरे खांदे ने, कट्टे खांदे ने, बच्छे खांदे ने, जीव खांदे ने। बकरी कहंदी मैं इस करके हसी हां भी महस अकत धूड़ा खाण दा सदका मेरी ये खल होई है कि जिन्हां दा किता ही ये है, कर्तव्य ही ये है, जेड़े इस चस्के दे अंदर फसे हां। मांस खाण गल वड के ते हाल तनाड़ा कौन होवसी। उन्हां दा हाल की होएगा? ये रीजन है मैं हसदी हां।

कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नूं सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नूं साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इन्हां सारयां दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संशय दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है, गुण निधान हर नामा जप पू

जयकार करदा है। इस जय जयकार दे पिछे इको ही गल है जो राज दी है, क्योंकि गुरु तो बिना होर कोई ऐसा नहीं जो प्राणी मात्र लई मुकत दा द्वार खोल सके। नौ दरवाजे दसवां द्वार, बुजरे ज्ञानी एहो विचार, एहो ही ब्रह्म दी विचार है, और जेड़ी विचार गुरु तो बिना होर कोई दे नहीं सकदा। साई फरमान करदे हन, गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा, क्योंकि दुनिया विच कोई किसे दी एक दिन दो दिन महीना जा साला बदी मदद कर सकदा है, मगर परमात्मा जो है ओ गुरु राही इस संसार दे विच आके सारे संसार नू फिर परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। साई फरमान करदे हन, क्योंकि गुरु ही है जेड़ा दोबारा इस मनुख नू परमात्मा दे घर तक पहुंचा सकदा है, और ऐसे दा ही साथ सच्चा है, जो सच्चे गुरु दा साथ करदा है ओ ही सच्चे परमात्मा नू पा सकदा है। साहिबां दा

कतहु सुचेत होके चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होके सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत होके चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होके सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसी दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आओ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए? ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, ये तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहू भय किन्नर पिसाच कहू प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहू कुरान को निदान जान लेत हो काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत काऊ त्रिगुण अतीत काऊ सर

कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूं

किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा, किवन किन्हीं निवल भुयंगम साधे, मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा, किन्हीं ग्रह तज वन खंड पाया, किन्हीं मोन अवधूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती।

पावन पवित्र शब्द कबीर जी महाराज दी पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने कीता, वड्डियां लोगां ने कीता, ओदा जिक्र कर रहे हैं। कहंदे ने कि बंदगी करदा हां, ओदी महान कृपा नाल सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, पर लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझते ने एक नीवी जात का होके लोग इन मथे टेकते ने। हैं ए क्यों? बंदे दा सुभा है, बंदा किसे दी वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करदा, किसे दी प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करदा। कबीर जी नूं ए सजा दिती गई कि इनू पैरां नूं बेड़ियां, हथां नूं हथकड़ियां पाके गंगा विच छुड़ दिता जावे। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझदे ने, ते बंदगी वाले पुरुष नूं गंगा विच सुट्टन लगे। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया ओदा जिक्र कीता। पर कहंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने ओदा आसरा लिया, उन्हां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। ता आओ प्यार नाल सरवण करो, कह रहे

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

और शुभ बोलते हां, पर क्योंकि साडा तन करके ता सत्संग विच जुड़ना हुंदा ही है, पर मन करके असी कदी कदी जुड़दे हां। एहो ही कारण है कि मालिक दी दरगाह विच साडियां कीतियां हुईयां सारियां अरदासां बेनतियां कबूल नहीं हुंदियां, पर गुरबाणी गवाह है कि बाबा नानक गुरुदेव नानक अपने जीवन विच जदों जदों भी बोले जो भी शब्द मुख चो उचारण कीते ओ तत्काल परमात्मा दी दरगाह विच परवान होए। साहिबां दा फरमान है गुरबाणी द्वारा, गुरु नानक बोले दरगह परवान, क्योंकि गुरु ते परमेश्वर दे विच कोई अपेदता नहीं, गुर परमेश्वर एको जान, गुरु ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं, ये दोनों एक समान हन। सो गुरु नानक देव जी दा बोलिया होया सदा ही परवान होया, और मेहरवान जो सदा मेहरां दा दाता है, जो भी उसका दास बन जाता है दास दी लाज सदा ही मेहरवान रखता है, और उसका बोलिया होया हमेशा ही मालिक दी दरगाह दे विच कबूल हुंदा है। सतगुरु फरमान करते हैं।

जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे इक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मेनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, पांच मील तुरदे हुए ब्यासा नदी।

जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे

बेशक चखड़ चलदा होवे मी बसदा होवे ए ख्याल रख तेरी सेवा और तेरे नितनेम विच फर्क ना पवे तां बख्शीशां दा हकदार होवेगा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह इस शब्द विच बख्शीश।

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना है।

भाई तू क्यों रोना है? ते रोन वाला कवेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़ है। ता जवाब दिता उस सुता है हो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान जीरान कहते ने कब्रस्तान कब्रस्तान जाके सौंगे ही ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ए भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है।

सतगुरु कहंदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया ते मैल नाल पारा भी हो गया। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी काला होआ स्याओ फिर तरेगा किवें मैल नाल ते पारा हो गया।

सच वंडन वाला, सच दा प्रचार करन वाला, नगरी नगरी ते द्वारे द्वारे। भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने, चढ़िया सोधन धरत लुकाई, भाई मरदाने नू नाल लैके जगत दे मालिक। कहन लगे मरदाने आ चल, तैनू ऐसे इंसान नू मिलावा जेड़ा कम ता होर करदा है, लेकिन उदे मन विच भाई मैं धर्म दा कम पिया करना, मैं सच्चे नू रिझा लवांगा, ते सच्चे नू रिझा के मैं शायद तर भी जावां। तो लंबे दी धरती नू तार दे गरीब नवाज पातशाह। उथे लागे एक नगरी, एक हवेली लागे जाके गरीब नवाज।

विश्राम दी भी जरूरत नहीं, दो घड़ियां बहने गुरमुखा फिर असा चल दे बनने। पर भोजन ता कर लो ना। आवेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे कर देने, जथा शक्त सेवा भी कर दा। ए आज नहीं, ए रोज ही ऐसा चलदा है। सतगुरु कहन लगे भाई फिर ता तेनु कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम कर दे हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम कर दे हो, कदे अपने वल वेंदा है, कदे बाबे वल वेंदा है।

चल सकया। सतगुरु कहन लगे की काम कर दे हो? हुण सोचदा भई जे झूठ बोलिया ते कोई पूरा लगदा बुझ जावेगा, ते क्यों ना पहला ही मैं सच बोल दिया। कहन लगा तुहाडे दर्शन करके बड़ा प्रभावित होया, मन गदगद हो गया, तुहाडे चरण पैण नाल ए मेरा घर भी पवित्र हो गया, ते तुहाडे सामने मेरे कोल झूठ भी नहीं बोलिया जांदा, मैं सच्ची गल कहना वा। मैं चोरी करदा ते चोरियां करवाना वा, पर जो कुछ लुटदा माल है वह मैं गरीबां च वंड देना वा, ते आ वेख लो भोजन भी पैक कर दे। सतगुरु कहन लगे तेरे सच तू असी सदके जाइए, कदे कोई चोर थोड़ा कहंदा मैं चोरी करदा, पर तू सच बोलिया। सतगुरु कहन लगे एक सच असी भी बोलन लगे हां,

चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए हैं। बाबा जी खुश होए हैं तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ, दो प्रसादे छक लो। सतगुरु कह लगे फिर कदे आवांगे ते छकांगे, हुण असी चलने हैं।

एक होर मैं सच बोला, ए चोरी मेरे कोलू छुटनी कोई नहीं। एक होर मैं सच बोलदा, भाई चोरी नहीं मैं छड़ सकदा। सतगुरु कहन लगे ना छड़, पर तू सच बोलिया ना, सदा सच बोली, असी ते जा रहे हैं, वादा कर सच बोलेगा। हां बाबा मैं वादा करदा सच बोलांगा।

गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी जे तू नहीं मुड़ सकता।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोट महला
1: चौथा
0: चौथा। सब मिलके करो कीर्तन।

चारे पासे एक खबर फैल गई। चंदू जिसनु समय दी हकूमत दे बादशाह ने गुरु अर्जन देव पातशाह नु तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वल्लों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा खौफ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने है। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहब जी नू जदों चंदू दे भेजे हुए दूता ने रिश्ता कर दिता और आके दसया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नूं रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमे विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारे दरबारे ए नौकरी करदा सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुवारे दी इट मोरी नू ला आए हो, पाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया ते गुरु घर नू एक बहुत नीवा दर्शाया, जिसनू सुन के कहंदे ने संगता ने बड़ा रोस कीता और संगत ने आखिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी हो आप जी ने ए रिश्ता नहीं लेना, वापस कर दियो, मोड़ दियो रिश्ता।